मैनू इन्नी समझ के थे मैं लिख ला इदा मेरी माँ ने मैनू दसिया पुते ये गल इदा ते बापू ने पढ़ाया सच्चे आला कहदा ते बापू ने पढ़ाया सच्चे आला।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।

अपने आप को चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिकोजी एंड विलियम्स पार्कवे मेमोरियल गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5000 पर कॉल कीजिए 905-456-2733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: नम देहि देहि ओम नमो गुरु गोरखनाथाय धन लक्ष्मी आकर्षणाय ओम
1: मेरे बागे गुरु पूर्ण का

0: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 and 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
1: श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम।

श्री विजित्वी हनुमन्माला मन्त्रो श्री गणेशाय नमः ॐ अस्य श्री विजित्वी हनुमन्माला मन्त्रस्य श्री रामचन्द्रो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री विचित्रवीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे तारा मंत्र जपे विनियोगः तत करण्यासः ओम राम अमुष्टाभ्याम नमः ओम रीम गर्जनीभ्याम नमः ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः ओम रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम रह कर कर कर पृष्ठाभ्याम नमः तद अंगन्यासः ओम राम हृदयाय नमः ओम रीम शिरसि स्वाहा ओम रौं शिखायै वसुद ओम रीम कवचाय हुम ओम रौं नेत्रत्रयाय वसुद ओम रह अस्त्राय पट तद ध्यानम वामे करे वैरवहं महंतं शैलं परिशृङ्खरमारयाख्यम् दधानमाख्यामात सुवर्णभरणं पदीज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् ॐ नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रणयकारानलप्रभाज्वलत्कृतापवस्त्रदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकटविक्रमवीरदैत्य दानवयक्षराक्षस ग्रहबन्धनाय भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह शाकिनीग्रह डाकिनीग्रह काकिनीग्रह कामिनीग्रह ब्रह्मग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह चोरग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भंजन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्री ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वाराकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मे कुरु कुरु स्वाहा ॐ राम ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मे कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं कृत्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन्माला।

अथ श्रीकुलदेवी स्तोत्रम् ओम नमस्ते श्रीकुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुलसंरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंध्यं महाघोरां ग्राही मां शरणागतम् त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता ग्राही मां शरणागतम् चिदग्रीमण्डल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वां राज गौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वद्वत्सलोऽहं आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या ग्राहि मां शिवगेहिनी श्रीकुलदेवी स्तोत्रम् श्रीकुलदेव्याचरण अर्पणम् अस्तु।

ऐसी जाग लगाई मैनू तेरे कोई शहर आए दिल मोल दी तूने वाले आयो बाबा बालक ना।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम या अली मदद। और आपके लिए वीकेंड का जो मौसम है बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिलीज के साथ। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आज अब आप प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। और अगले हफ्ते गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो अब इस महीने गुरु पूर्णिमा है महीने के आखिर में, तो आप सभी को फिर उसके बाद राखी का त्यौहार आने वाला है, तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिविक हॉलीडे अगस्त 1 को आएगी, तो बस लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। फिर उसके बाद थोड़ा सितंबर में भी आएगा लॉन्ग वीकेंड, अक्टूबर में भी आएगा। तो बाकी अपने आप भी कई लोग अब आजकल घर से ही काम करते हैं, बहुत सारे लोग कोविड के बाद भी, तो अभी जो घर से काम करते हैं उनको तो थोड़ा बहुत टाइम का घर पे रहने का मिल ही जाता है। तो आइए अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट्स लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं, डिजिटल बारबेक्यूज, लेटेस्ट डिजाइन का टीवी लेना है, तो ये सारा सामान आपको बहुत ही सस्ते रेट में, अब गर्मियां हैं तो बहुत सारे लोग घर चेंज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और आपको सारा कुछ खरीदना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, उनकी समर स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी एक लोकेशन आपके लिए इंटरमॉड लैंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है किचन और वाटर लुक गोल्फ में, आप नसीब सिंह को कॉल कीजिए 519-546-1260, 519-546-1260। और आपने फिर घर खरीद लिया तो फिर मूव भी होना होगा, तो अगर मूव होना है तो आप मूविंग के लिए एच के मूवर्स को कॉल कीजिए, उनकी बहुत सारी टीम्स है कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं, 416-524-7604 पे आप उनको एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन में आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिफेंडर गौर रोड पे मौजूद है, तो आप किसी किस्म का भी आपको आपने कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन .com पर जाइए, तो और उनकी जानकारी लीजिए और फिर आप उनको कॉल कर लीजिए। हर तरह के इंश्योरेंस के लिए आपके जैसे कि बीमा के भी आपको क्लेम है किसी तरह का भी, वो भी उसके लिए आपका पूरी मदद करेंगे, और हर तरह के वो क्लेम आपको मास्टर कलिजन डिपो अब लंदन में आपके लिए मौजूद है, तो आप लंदन में आप रहते हो जहाँ आसपास के इलाके में रहते हैं तो कलिजन का काम आपका बहुत बढ़िया करके देंगे। तो आइए आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी की फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की गुड्डी, उसी का फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं। लेट्स गो विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। रफी साहब क्या बात है, कमाल है। Thank you.

अजवीन तुले आ फूले कमल अजवीन तुले आ तुझे तुले के दिल तेरे उसे तुले आ साडे हिंदू लेखे साडे हो साडे हिंदू लेखे साडे दिलानू मिला गए आर से तुले के दिल ते सोने सोने काले दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आते हैं सारे भूले के।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपका ही प्रोग्राम है, आपकी ही पसंद के गाने हैं। तो जिन लोगों ने ये गाने पसंद किए थे उनको हम प्ले कर रहे हैं, मैसेज भेजा था। तो अब आपने भी अगर कोई गाना सुनना है अगले प्रोग्राम में तो आप आज ही हमें मैसेज आप हमें मैसेज भेज सकते हो, और फिर हम आपका भी पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे। तो एक फिल्म थी पुरानी, वो 1959 में आई थी, भंगड़ा, पंजाबी फिल्म। तो उन दिनों में क्या होता था कि ये जो पंजाबी फिल्में थी, ये जो वहाँ अलग अलग शहरों में गांव में वो किसी जो जैसे बहुत सारे चराहे उनको चराहे बोलते थे, तो वहाँ पे जो बने हुए होते थे, वहाँ पे छड़े बने हुए होते थे, वहाँ पे वो स्क्रीन लगा के लोगों को फ्री ऐसी पंजाबी की मूवियाँ दिखाते थे। तो बहुत बार ये जो भंगड़ा फिल्म थी, ये बहुत सारे गांवों में शहरों में ऐसे दिखाई गई थी, मुझे याद है। तो ये चौक बोलते हैं ना उनको, तो चौक अलग अलग जगह पे बने हुए होते हैं, पर फिर उनको देखते थे कि कहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, तो वहीं पे वो कुर्सियाँ लगा देते थे लोगों के बैठने के लिए शाम को। आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो वहाँ पे बाहर आपको याद होगा उन दिनों में ऐसे दिखाते थे शहरों में। और फिर स्कूल में भी कई अच्छी फिल्में आती थी, जैसे संत ज्ञानेश्वर थे, अनपढ़ थी, तो वो फिल्में दिखाई गई थी स्कूल की तरफ से। तो मेरे फुफ्फड़ जी क्या थे कि वहाँ सिनेमा में ऑपरेटर थे वो, तो वो सारा फिल्म चलाने का वही काम करते थे हमारे बंगा शहर में। तो फिर मेरी बुआ जो थे, मेरा स्कूल पास ही था वहाँ पे, तो मेरी बुआ जो था वो वहाँ पे लेडीज शो होता था ना, मैटनी शो। तो फिर वो मुझे वहाँ से स्कूल से ले जाके, तो अपने साथ ले जाके खिला पिला के वहाँ पे कुलचे वगैरह तो छोले वगैरह, तो फिर मूवी अंदर दिखाने ले जाते थे। तो पीछे पहले दिखाते थे कि मेरे फुफ्फड़ जी कहाँ पे वो काम करते थे अंदर, कैसे वो फिल्म चलाते थे वहाँ से, तो फिर सारे वो थिएटर में जाती थी। तो ये बचपन की यादें हैं, बहुत प्यारी सी यादें हैं, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आप जाइएगा, जी हाँ, तो आप टॉप क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, उनकी समर सेल का फ़ायदा उठाइए। उन्होंने बहुत बढ़िया सेल लगा रखी है आपके लिए, और आप उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में भी है। आपने घर खरीदा है, आपको जब बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया सा चाहिए, आउटडोर का बारबेक्यू चाहिए, आजकल बड़े डिजिटल वगैरह आ गए हैं, किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट एडवांस स्मार्ट वंस, तो आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए। और आपने छोटी सी किचनेट सेट करवानी है तो वो भी आपके लिए कर देंगे। आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लीजिए, उनके अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045। और अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4416-524-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, लंदन के आसपास आप रहते हैं तो आप
masterkollegiandepot.com पर जाकर जानकारी लीजिए और उनको कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो अगर आपने वेज नॉन वेज खाना ऑर्डर करना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है किसी इवेंट के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 905-814-1703-905-814-1703 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको ये गीत सुनाती हूँ, 1959 की फिल्म भंगड़ा से। यस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल सॉन्ग है।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब ये जी हाँ, तो ये जो सिंगल्स थी ना उस जमाने में, तो क्या होता था कि उस जमाने में लड़कियों को इतना म्यूजिक मूवी ये सब कुछ इतना ज्यादा इजाजत नहीं था। तो हम इन लेडीज के लिए आगे आने के लिए और इस तरह से अपने आपको मूवीज में अपने आप को डेवलप करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे गाने हमारे लिए गाकर गए हैं उनके, उसके लिए उनको सलाम करते हैं, सर नवाते हैं और उनकी कदर करते हैं, क्योंकि कमाल की उनकी गायकी थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी उस जमाने में अपने आप को आगे लाने के लिए, हिम्मत भी थी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे था कि सब के जमाने में कोई इतनी ज़्यादा लेडीज को सुना, बहुत ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम में ज़्यादा नहीं आ सकते थे, तो इसलिए बहुत कम लेडीज थी। अब तो काफ़ी सारी लेडीज हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में हैं और बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि उनको आजकल जो मीडिया है बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत एडवांस्ड हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं किसी और स्टेशन पे अगर हम देखते हैं बहुत सारी लेडीज बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज है इंडस्ट्री की, तो वो सारी नॉलेज भी शेयर करते हैं, तो उनको भी हम सलाम करते हैं। इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया उन्होंने ज़िंदगी में और एक प्रोफेशन उन्होंने बना लिया इसको और प्रोफेशनल ढंग से सारा करते हैं। इट्स रियली नाइस टू सी दैट। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। ये जो बत्ती बाल के मेरे ऊपर रख दिया ओल्ड सॉन्ग, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आपको आप अगर प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं तो
1: Make so much more than money when you earn Scene Plus points with Scope.

0: बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं आप सभी को विश करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही अच्छा हो। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो अभी क्या है कि बच्चे लोग छुट्टियों पे हैं, तो आप गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, सेफ, अपने आप को भी सेफ रहिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखिएगा। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाण स्वादा भला है वंडरफुल।
1: सेफ वन को तो बना ना।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557.

अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकोजी एंड विलियम्स पार्क में, जो गोल्डन गेट प्लाजा में, ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-1990 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: ideas of Ron and Dot's Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: बात शायद से कभी बात बिनती चौपाई अमली करो बात छूरन बोले जिंदगी सब चरण मन रही तुम्हारा अपना जान करो प्रतिभा हमरे दुष्ट समय तुम पाओ आपको बात कर मोहे बचाओ सुखी बस है मानो परिवार जीवत सिंह समय परिवारा सूर्य छान कर पूरन कोई हमारी आशा दूर भजन की नहीं प्यासा तुम्हें चार कोई अमर न जाओ तो मर जाओ तो तुम थे पाओ सिर्फ सिख हमारी भाई चुन चुन शक्ल हमारी भाई आप बात है मुझे उपल पर मैं काल माता से मर मुझे सदा हमारे शिव चूर भरा

0: राजा मालवा द्वापर वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिदोरी तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
0: राजा मालवा द्वापर वेडिंग स्टोर।
2: श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः।

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजं सूर्यगुं शक्ति।

श्री विचित्र हनुमान माला मंत्र श्री गणेशाय नमः ओम अस्य श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्रस्य श्री रामचंद्र भगवान ऋषि अनुष्टुप छंद श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे माला मंत्र जपे विनियोगः तथा करन्यासः ओम राम नमुष्टाभ्याम नमः ओम रीम गर्जनीभ्याम नमः ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः ओम रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम रह कर कर कर पृष्ठाभ्याम नमः तद अंगन्यासः ओम राम हृदयाय नमः ओम रीम शिरसि स्वाहा ओम रूम शिखायै वसुतः ओम रीम कवचाय हुम ओम रौं नेत्रत्रयाय वसुतः ओम राह अस्त्राय पट तथ ध्यानम वामे करे वैरवहं वहन्तं शैलं परिशृङ्करमारयाख्यम दधानमाख्यामात सुवर्णभरणं पदे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् ओम नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलयकालानल प्रभाज्वलत्कुतापवत्सदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयम् प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याघ्र मुखम बंधय बंधय सर्व मुखम बंधय बंधय राज मुखम बंधय बंधय सभा मुखम बंधय बंधय शत्रु मुखम बंधय बंधय सर्व मुखम बंधय बंधय लंका प्रसाद भंजन सर्व जनम मे वशमानय वशमानय श्री ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वाकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर ओम वत् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमान।

अथ श्रीकुलदेवी स्तोत्रम् ओम नमस्ते श्रीकुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुलसंरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री भागवत माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता त्याही संपूर्ण जगत विश्वबंध्यं महाघोरं त्राही मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राही मां शरणागतं चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवं त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है त्वत्वत्सलोऽहं आद्ये त्वं रक्ष रक्षा धुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए वीकेंड का जो मौसम है बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिलीज के साथ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आज अब आप प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। और अगले हफ्ते गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो अब इस महीने गुरु पूर्णिमा है महीने के आखिर में, तो आप सभी को फिर उसके बाद राखी का त्यौहार आने वाला है, तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिविक हॉलीडे अगस्त 1 को आएगी, तो बस लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। फिर उसके बाद थोड़ा सितंबर में भी आएगा लॉन्ग वीकेंड, अक्टूबर में भी आएगा। तो बाकी अपने आप भी कई लोग अब आजकल घर से ही काम करते हैं, बहुत सारे लोग कोविड के बाद भी, तो अभी जो घर से काम करते हैं उनको तो थोड़ा बहुत टाइम का घर पे रहने का मिल ही जाता है। तो आइए अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया किचन की गैजेट्स लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं, डिजिटल बारबेक्यूज, लेटेस्ट डिजाइन का टीवी लेना है, तो ये सारा सामान आपको बहुत ही सस्ते रेट में, अब गर्मियां हैं तो बहुत सारे लोग घर चेंज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और आपको सारा कुछ खरीदना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, उनकी समर स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी एक लोकेशन आपके लिए इंटरमॉड लैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है किचन और वाटर लूप गोल्फ में, आप नसीब सेंटर को कॉल कीजिए 519-546-1260, 519-546-1260। और आपने फिर घर खरीद लिया तो फिर मूव भी होना होगा, तो अगर मूव होना है तो आप मूविंग के लिए HK मूवर्स को कॉल कीजिए, उनकी बहुत सारी टीम्स है कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं, 416-524-7604 पे आप उनको HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन में आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिफेंडर गोर रोड पे मौजूद है, तो आप किसी किस्म का भी आपको आपने कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन depot.com पर जाइए, तो और उनकी जानकारी लीजिए और फिर आप उनको कॉल कर लीजिए। हर तरह के इंश्योरेंस के लिए आपके जैसे कि बीमा के भी आपको क्लेम है किसी तरह का भी, वो भी उसके लिए आपका पूरी मदद करेंगे, और हर तरह के वो क्लेम आपको मास्टर कलिजन डिपो अब लंदन में आपके लिए मौजूद है, तो आप लंदन में आप रहते हो जहाँ आसपास के इलाके में रहते हैं तो कलिजन का काम आपका बहुत बढ़िया करके देंगे। तो आइए आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी की फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की गुड्डी, उसी का फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं। लेट्स गो विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। रफी साहब क्या बात है, कमाल है।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपका ही प्रोग्राम है, आपकी ही पसंद के गाने हैं। तो जिन लोगों ने ये गाने पसंद किए थे उनको हम प्ले कर रहे हैं, मैसेज भेजा था। तो अब आपने भी अगर कोई गाना सुनना है अगले प्रोग्राम में तो आप आज ही हमें मैसेज आप हमें मैसेज भेज सकते हो, और फिर हम आपका भी पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे। तो एक फिल्म थी पुरानी, वो 1959 में आई थी, भंगड़ा, पंजाबी फिल्म। तो उन दिनों में क्या होता था कि ये जो पंजाबी फिल्में थी, ये जो वहाँ अलग अलग शहरों में गांव में वो किसी जो जैसे बहुत सारे चराहे उनको चराहे बोलते थे, तो वहाँ पे जो बने हुए होते थे, वहाँ पे छड़े बने हुए होते थे, वहाँ पे वो स्क्रीन लगा के लोगों को फ्री ऐसी पंजाबी की मूवियाँ दिखाते थे। तो बहुत बार ये जो भंगड़ा फिल्म थी, ये बहुत सारे गांवों में शहरों में ऐसे दिखाई गई थी, मुझे याद है। तो ये चौक बोलते हैं ना उनको, तो चौक अलग अलग जगह पे बने हुए होते हैं, पर फिर उनको देखते थे कि कहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, तो वहीं पे वो कुर्सियाँ लगा देते थे लोगों के बैठने के लिए शाम को। आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो वहाँ पे बाहर आपको याद होगा उन दिनों में ऐसे दिखाते थे शहरों में। और फिर स्कूल में भी कई अच्छी फिल्में आती थी, जैसे संत ज्ञानेश्वर थे, अनपढ़ थी, तो वो फिल्में दिखाई गई थी स्कूल की तरफ से। तो मेरे फुफड़ जी क्या थे कि वहाँ सिनेमा में ऑपरेटर थे वो, तो वो सारा फिल्म चलाने का वही काम करते थे हमारे बंगा शहर में। तो फिर मेरी बुआ जो थे, मेरा स्कूल पास ही था वहाँ पे, तो मेरी बुआ जो था वो वहाँ पे लेडीज शो होता था ना, मैटनी शो। तो फिर वो मुझे वहाँ से स्कूल से ले जाके, तो अपने साथ ले जाके खिला पिला के वहाँ पे कुलचे वगैरह तो छोले वगैरह, तो फिर मूवी अंदर दिखाने ले जाते थे। तो पीछे पहले दिखाते थे कि मेरे फुफड़ जी कहाँ पे वो काम करते थे अंदर, कैसे वो फिल्म चलाते थे वहाँ से, तो फिर सारे वो थिएटर में जाती थी। तो ये बचपन की यादें हैं, बहुत प्यारी सी यादें हैं, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आप जाइएगा, जी हाँ, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, उनकी समर सेल का फ़ायदा उठाइए। उन्होंने बहुत बढ़िया सेल लगा रखी है आपके लिए, और आप उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में भी है। आपने घर खरीदा है, आपको जब बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया सा चाहिए, आउटडोर का बारबेक्यू चाहिए, आजकल बड़े डिजिटल वगैरह आ गए हैं, किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट एडवांस स्मार्ट वंस, तो आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए। और आपने छोटी सी किचनेट सेट करवानी है तो वो भी आपके लिए कर देंगे आप। और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लीजिए, उनके अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045। और अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4416-524-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, लंदन के आसपास आप रहते हैं तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर जानकारी लीजिए और उनको कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो अगर आपने वेज नॉन वेज खाना ऑर्डर करना है,
आपको लाइव कुकिंग करवानी है किसी इवेंट के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 905-814-1703-905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको ये गीत सुनाती हूँ 1959 की फिल्म भंगड़ा से। Yes, very good. Beautiful song.

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब ये, जी हाँ, तो ये जो सिंगल्स थी ना उस जमाने में, तो क्या होता था कि उस जमाने में लड़कियों को इतना म्यूजिक मूवी ये सब कुछ इतना ज्यादा इजाजत नहीं था। तो हम इन लेडीज के लिए आगे आने के लिए और इस तरह से अपने आपको मूवीज में अपने आपको डेवलप करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे गाने हमारे लिए गाकर गए हैं, उनके उसके लिए उनको सलाम करते हैं, सर नवाते हैं और उनकी कदर करते हैं, क्योंकि कमाल की उनकी गायकी थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी उस जमाने में अपने आप को आगे लाने के लिए, हिम्मत भी की, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे काफ़ी सारे लोग के जमाने में कोई इतनी ज़्यादा लेडीज को सुना, उन्हें बहुत ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम में ज़्यादा नहीं आ सकते थे, तो इसलिए बहुत कम लेडीज थी। अब तो काफ़ी सारी लेडीज हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में हैं और बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि उनको आजकल जो मीडिया है बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत एडवांस्ड हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं किसी और स्टेशन पे अगर हम देखते हैं बहुत सारी लेडीज बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज है इंडस्ट्री की, तो वो सारी नॉलेज भी शेयर करते हैं, तो उनको उनको भी हम सलाम करते हैं। इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया उन्होंने ज़िंदगी में और एक प्रोफेशन उन्होंने बना लिया इसको और प्रोफेशनल ढंग से सारा करते हैं। इट्स रियली नाइस टू सी दैट। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं, ये जो बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रख दिया ओल्ड सॉन्ग, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और आपको आप अगर प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं तो
1: Make so much more than money when you earn Scene Plus points with Scope.

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं आप सभी को विश करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही अच्छा हो। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो अभी क्या है कि बच्चे लोग छुट्टियों पे हैं, तो आप गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, सेफ अपने आप को भी सेफ रहिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखिएगा। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वादा भला है वंडरफुल। आज हम आपके लिए सारा पंजाबी के ही गाने सुनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

सहज मिला मिलिया परवाना, नात स्मरण न आवण जाण। ठाकुर महदास दास महसूस।

आ रहे ने जी, ते इना दी जो प्यारी आवाज है रूह दा सफर लैके ये आ रहे ने। पूरन शाह कोटी जी नू इना ने यह ट्रिब्यूट दिती है। ते मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर पता तुसी नोट कर लो, ते 24 जुलाई नू लाइव जदो मास्टर सलीम गाउणगे ते फिर जो समा जो है वह बनिया जाएगा, ते इस दा हिस्सा तुसी भी बनो। ते टिकट्स जो ने यह अवेलेबल ने www.milnatickets.com ते, ते तुसी जो वधेरे जानकारी भी लै सकते हो। नंबर भी थानू नोट करवा देंगे, नंबर 6477839873 नंबर है जी। 6474388953 ते जी तुसी 9873 माफ़ी चाहनी हाँ, तुसी संपर्क करके भी टिकट्स बारे जानकारी लै सकते हो। हालांकि milnatickets.com ते ऑनलाइन टिकट्स जो ने यह लिया जा सकती ने। सो छुट्टियां दा बच्चियां दा जो समा है तुसी जो है परिवार दे नाल जो अच्छी गीतकारी जो है वह सुनना चाहते हो, तो फिर यह रूह दा सफर मास्टर सलीम वालों जी ये थोड़े लिए है। सो तुसी मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर 24 जुलाई की तरीक जो है ये नोट बिल्कुल रखनी है जी। सो इस दे नाल ही जी आओ सरवण करते हाँ एक शब्द प्रोग्राम नू अगे वधाईए। प्रोग्राम पंजाबी लहरां रेडियो दे नाल तुसी बने रहना जी।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
2: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
3: प्रीमियम ऑटो रिपेयर्स एंड यूज्ड कार सेल्स, गुरप्रीत अड्डा होरां दा फोन नंबर 416-747-6800। किसी भी मेक एंड मॉडल दी गड्डियां दी कोई रिपेयर करवानी है, मिशन टेस्ट करवाना है, प्रोफेशनल ऑटोमोटिव सर्विसेज, इंजन ट्यूनअप, ट्रांसमिशन ट्यूनअप, येलो स्टिकर्स चाहिए ने क्यू वैंस के लिए, फ्यूल इंजैक्शन एंड इलैक्ट्रीकल स्पैशलिस्ट, प्रीमियम ऑटो रिपेयर यूज कार सेल्स। हीटिंग एंड कूलिंग सर्विसेज के खास मुहारत रखते हैं। सो पहुंचना 21 मेलविक ड्राइव नॉर्थ यॉर्क, गुरप्रीत रड्डा होरी, प्रीमियम ऑटो रिपेयर एंड यूज कार सेल्स तो 416-747-6800 416-747-6800 प्रीमियम ऑटो रिपेयर एंड यूज कार सेल्स। मनमोहन वारस, कमलहीर ते संतार दे पंजाबी विरसा शो दीआं टिकट्स अजे तक जे तुसीं नहीं लईआं तां तुहानूं इक प्रोमो कोड सेंड कर सकदे हां जिहदे नाल तुहाडी सेविंग हो जाणी आ। सानूं टैक्सट मैसेज करो पंजाबी विरसा लिख के 647-400-6862 ते असीं तुहानूं इक प्रोमो कोड सेंड करांगे। 2 बजे तों पहलां अज्ज सानूं इस नंबर दे उपर टैक्सट मैसेज कर दिओ पंजाबी विरसा लिख के ते प्रोमो कोड तुहानूं भेज दित्ता जाएगा 647-400-6862।
4: ਸਾਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੁੱਡਬਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ, ਕਮਲਹੀਰ ਤੇ ਸੰਤਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕੋਨਸਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਆ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜੋ, ਫਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਆਰਟਿਸਟ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ, ਕਮਲਹੀਰ ਤੇ ਸੰਤਾਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੋਗੇ and it would be very fun. tickets tickets lene ticketmaster.ca te te assi sare jane ronak mela launge utthe july 25 nu toronto vich te assi sare jane manmohan singh, kamal singh te santar nu live in concert dekhunge

0: राजधानी स्वीट्स,
1: ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
2: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: नजरिया प्रोग्राम के नाल जुड़े हुए सारे ही दोस्तों का निघा स्वागत जी। और इस गलबात नूं साडे इस प्रोग्राम नूं तुहाडे तक पहुँचाउण दे लई सानूं ऑप्टिकल वन हमेशा हैल्प करदा है। 905-455-0752 उहनां दा टैलीफोन नंबर है। और दो लोकेशन तों सेवावां दिंदे ने। तुसीं एनी टाइम उहनां नूं कॉल करके अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट बनाउणी है ते जरूर उहनां दे नाल संपर्क कीता जा सकदा है। 905-455-0752 उहनां दा टैलीफोन नंबर है। और तुसीं किसी प्रकार दीआं भी ऐनकां लैणीआं ने जां अखां दा चैकअप करवाउणा है, स्पैशलिस्ट के नाल अपॉइंटमेंट की जरूरत है, तो थोड़ी मदद करते हैं ऑप्टिकल वन वाले। 9054550752 टेलीफोन नंबर है। दुनिया भर के कितने भी ट्रैवल तुम करना तो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 से गल की जा सकती है। प्रीमियम आटो रिपेयर एंड यूज कार सेल्स तो गुरपीट अड्डा जी 416-747-6800 संपर्क कर सकते हो। ट्राई सिटी प्रोफेसनल रियल्टी ब्रोकरेज तो अवतार सिंह जी बडियाल 416-464-2067 से उन्होंने नाल गल की जा सकती है। किंग टोइंग कितने टोइंग दिया सेवावां चाहीदियां ने तो फिर 416-677-2222 से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों रियल स्टेट के कोई भी ट्रांजैक्शन तुसी करनी है तो रीमैक्स प्रेजिडेंट रियल्टी तो मनजीत गिल मेरे नाल तुसी संपर्क करना हो 416-669-1379 से कॉल कर सकते हो। साढ़े को एक बड़ी प्यारी बहुत खुली डुली एक बैडरूम की लीगल बेसमेंट जी 1 अगस्त तो खाली होने जा रही है। अगर तुम उसको रेंट पर लेना बोवे ड्राइव एंड हॉर एंटेरियो तो बिल्कुल कॉर्नर के मौजूद है। इसको देखने के वास्ते 416-679-1379 से संपर्क कर लियो। जेकर कोई थोड़े पास तकरीबन 6000 स्क्वेयर फीट का इंडस्ट्रियल यूनिट है जिदे तकरीबन 8-10 ट्रेलर पार्क करने की सुविधा भी हो भी तुम सू अगर उसको बेचना है तो फिर 416-679-1379 से कॉल कर लेनी है। तो इस तरह का ही एक इंडस्ट्रियल यूनिट सानू कोई 4000 स्क्वेयर फीट का होवे जिदा एक जिद एक ड्राइव इन डोर होवे तो भी अगर तुम उसको भी बेचना तो 416-679-1379 से संपर्क कर लियो जी। 416-669-1379 मेरा टेलीफोन नंबर है।
4: प्रोग्राम के इस हिस्से को थोड़े तक पहुंचता करने के लिए कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल्स की टीम का सानू साथ मिल रहा है। सो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल्स जाने पछाने नाम है। सो वन वे या रिटर्न टिकट्स के लिए सस्तियां एयर टिकट्स वेकेशन पैकेज या किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन के मदद चाहिए है तो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल्स को कॉल की जा सकती है 905-678-1200 905-678-1200। टोरंटो तो दिल्ली जाना है तो $1,099 की वन वे टिकट मिल सकती है। दिल्ली तो टोरंटो $1,090 की। इस तरह ही टोरंटो तो अमृतसर वन वे टिकट सिर्फ 1188 की है। जो रिटर्न टिकट की गल करा

0: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
1: हर एक जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर एक आरजू को जुबान नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों, एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं, प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: कल्चर ऑफ पंजाब।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

आपसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कई बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदि हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू विल लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब, ब्रॉट टू यू बाय देवदातना।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख रहे ने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32, 55, 80
1: ते 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: वो काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव ताकले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यहीं खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that, I sign off. She'll see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.